बुरे आईयां पाचे धर्म हजूर, हजूर दा बचन है कि जो कुछ तू कर रहे है अकाल पुरख वाहेगुरु वेख भी रहा है ते लिख भी रहा है। ए मत समझ भाई ए जग मिठा ते अगला किन्ने दिठा, जदों हिसाब होंदा है तां रत्ती मासे दा भी हिसाब हो जांदा है, जदों मालक बख्शिश करे तां फिर ओदा लख दा भी हिसाब नहीं लैंदा। इसलिए ऐसे कर्म ना कर कि जदों तू निरंकार दे द्वार जावे तेरी आत्मा कलंकित होवे, पापां दा बोझा तेरे सिर ते होवे ते फिर की मुंह विखाएगा। इसलिए हजूर कहंदे हन कि हर वेले तेरे हर एक काम ते उसकी अख है, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जेड़े चंगे कर्म करदे हन ओ नेड़े हो जांदे हन निरंकार दे, उन्हां नूं सद के गुरु अपने पास बिठा लैंदा है। आ मेरे बच्चे तू बड़ा चंगा काम कीता है, ते जेड़े अमोलक श्वास पा के नाम नहीं जपदे कुकर्मा विच पै जांदे हन, नशियां विच पै जांदे हन, माड़िया कमां विच पै जांदे हन, ते फिर जिवें इत्थे लोग उन्हां कोलों नफरत करदे ना, कोई कोल नहीं बैठन देंदा, इसे तरह उन्हां दी आत्मा कलंकित हो जांदी है। उत्थे भी जाके वो आदर नहीं पाउंदे, निरंकार फिर उन्हां नूं 84 दे दुखां विच गेड़े विच भेज देंदा है, ते हाल ए हो जांदा है कि जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पई है देश लम्मे, एदी सजा दा भागी ना बन। इस लई तैनू सोहना मनुच्छा जन्म मिलिया, इस नू जप जप के मिठे बोल बोल के जा, सेवा करके कोई उपकार करके जा, तेरा शरीर ना रहे तेरी याद सदा अमर रहे। इस लई पाप ना कर बंदिया।

कर दे हाय हाय। ये मत समझ पाप दा बीज बोना तो बड़ा सौखा है, आ जदों किकर दा बीज वेखिए तो बड़ा मखमल वर्गा बड़ा कूला होंदा बड़ा सोहना होंदा, पर जदों बीज बोईए तो जेड़ा फिर पौधा उगदा वो कंडियां दा भरिया होया, जिथे हथ लाएगा कंडे ही कंडे हैं। पाप दा बीज तो बड़ा प्यारा लगदा पहला, पर जदों प्रफुल्लित होंदा ही फिर ये जीवन नू कुंभी नरक बना देंदा है। इसलिए हजूर कहंदे हन पापां तो डर, कोई चंगा कर्म करना है तां उसे वेले कर लै, जे मन विच फुरना होया किसे पाप करन दा तां सोच उस नू देरी पा, हो सकदा है कोई तेरा चंगा कर्म तेरे सामने आवे तू पापां दे रस्ते तो हट जावे। इस

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट